0: रौनक खत्म हो जाएगी तुम्हारे चले जाने से।
1: गरीब अमीरों की महफिल की रौनक नहीं, हमेशा तमाशा बना है।
0: ठहरो अनिल, लौट आओ हमारे मेहमान बनकर, हम बुला रहे हैं, आओ ना। थैंक्स, हम आपसे कुछ मांगे तो इनकार तो नहीं करोगे?
1: जी नहीं।
0: फ्रेंड्स, आज की शाम और खुशगवार हो जाए इसलिए हमने अनिल साहब से एक वादा लिया है कि वो हम सबको एक गाना सुनाएंगे।
1: सर, मुझे तो एक ही गीत आता है और वो गम का गीत इस खुशी की महफिल में कैसे गा सकता हूँ?
2: वो खुशी क्या है अनिल जिसमें गम शामिल ना हो? ना गम सिंह।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।